सुनते उधरे वाहिगुरु गावे ते ओए दारे सुनते उधरे वाहिगुरु बिन से पापे घनेरे बिन से पापे घनेरे सचिया पाए दिशा बिन से पापे घनेरे पैसे पड़े मुह दे कोई तारे वाहिगुरु पैसे पड़े मुह

उतारे सचिया बादशाह बाहर बारे उतारे नानक दास तेरी शरणाई वाहिगुरु नानक दास तेरी शरणाई वाहिगुरु सदा सदा बल्ले हारे सदा सदा बल्ले हारे सचिया।

से हमारी वायु तो दिया गे यारे दासे हमारी वायु जियो बेंडे सब तेरा जियो बेंडे सब तेरा सचिया बादशाह।

प्रसाद सवैये स्त्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत गौ न देखे त प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के मत मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से उदत पौन के गौन को जात निवारे भारी बुजान के भूप फले बतन्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवेख भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम से धारे तीर्थ नान थया दम दान सुसंजम नेम अनेक विषय खय वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पिख है पौन हार जति जत धार सब सो विचार हजार देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सन्नाह दुर जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बटे बरे यार विचार है सार की धार बछैया तोर देश मरिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बात नहीं चकचार लवैया साहेब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भवेख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सवे अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद गदान अनेक सुअंबर साज परेंगे ब्रह्म महेश्वर विशंस चीपत अंत फसे जम फांस परेंगे जे न श्रीपत के प्रस है पगते नर फेर न देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नाथ फिरयो लियो साध समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिहान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साज कहो सुन ले हो सब है जन प्रेम कियो दिन ही प्रपायो काहुले पाहन पूज धर्यो सिर काहुले रिंग करे लटकायो काहु लख्यो हर अवाची दिशा में काहु पचाह को शीस निवायो कुपतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन दायो कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो

अकाल हरिय पाल हरिय छेद हरिय भेद हरिय जंत्र हरिय मंत्र हरि सो तेज हरिय तंत्र हरि अजात हरिय पात हरिय मित्र हरिय मात हरिय रोग हरिय शोक हरिय भ्रम।

वेद वेद योग देव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव कर हुई करत है। चंद्रमा शीतल न सूरज से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्यात ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन।

जुगन की चौकरे फिराई फिरत है। एक शिव भये एक गए एक फेर भय, राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विषण कित वेद यो पुराण कित, सिमृत समूहन के होय होय बितय है। मोन दीमतार कित अश्विनी कुमार कित, अंशावतार कित काल बस भय है। पीर पिकम्बर कित गने न परत, इत भूम हित होय के फेर भूम ही मिलय है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी, छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब अदलीब कैसे छत्रधारी, बड़ू अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सरद्रु जोधन से मानधारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप ची कपट, वेश पोषती अनेक दानी वावत है। शीस कौ कहा भयो मल्ल जो पिकाडत, अनेक दंड सोत न डंडौत अस टांग अथ तीस कौ। कहा भयो रुकी जो पे डार रहे, उर्द मुख मान ते न मुंड ने होरायो अद ईस कौ। कामना अधीन सदा दामना प्रवीण, एक भावना विहीन कस पावि जगदीस कौ। शीस पट कद जाके कान में खजूरा धस, मुंड छट कद मित्र पुत्र हूं के सोख सौ। आंक को चरैया फल फूल को बछैया, सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बूक सौ। कहा भयो भेंट जो घसत शीस वृक्षन, सो माटी को बछैया बोल पूछ लीजे जोक सौ। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण, एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचुई करत मोर दादर करत, जोर सदा घन घोर घन करियो करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत, ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे, काग और चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन, भावना यकीन दीन कैसे कह दरत है। जैसे एक सोंगी कहूँ जोगी या बैरागी, बन कबहू संन्यास भेष बन के दिखावई। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी, कहूँ लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी, कहूँ दंडधारी होय के लोगन भ्रमावई। कामना अधीन पर्यो नाथ दह नाचन, सु ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकारे पर शीत काल, कुंचर ओगा तहा अनेक दा पुकार ही। कहा भयो जो पे काल वत्र लियो, कांसी बीज चीर चीर चोर टाक उठारन सो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार, डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक दार मूड ज्ञान के बिना विचार, भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहते जो पे पाइये, अताप नाथ तापना अनेक तैन घायल सहत है। जाप के किए जो पे पायत, अजाप देव पूदना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़ते जो पे नारायण पाइयत, अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरत गतराण की बरत, कर पताल के बस क्यों भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी, को जोगी भयो को ब्रह्मचारी, को जति अनुमान वो हिंदू तुरक को रावजी। इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो, करता करीम सुविराजक रहीम। उई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान वो, एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव। एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो, देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज। ओई मान सब एक पे अनेक को प्रमाओ है, देवता देव जच गंधर्व तुरक। हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह, एक बान खाक बाद आतस ओ आप को रलाओ है। अल्लाह अफेक सोई पुराण यो कुरान, ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग दे कनु ककोट, आग उठे न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर दे अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट, उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केत कछ मछ केत उन को करत भज, केत अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। केत नब बीज अच पच को करेंगे भज, केत

तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मकानी वासी कित उदासी के फरमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआ चार पूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मडी मटली पहारे भीतन लगाए हारे झापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

रूपं न रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं लेखं गेखं जोनि

न रोगंग न शोकंग न मोहंग न मातंग न कर्मंग न वर्मंग न जन्मंग न जातंग अद्वैखंग अभेखंग जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं बराबरं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छयाद अद्वया विनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय उसारे गड्ढे फेर मेटे बनाए अगाधे अभयाद अद्वया विनाशी परे।

हंगे हंसने हंसनाथयो दंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न वितरे स भूते भवे के भवाने य चित्रे नारायण नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न जोभंग भूतंग भेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न के हंस देवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियछयाद अद्वया जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं व्यानिर्विखादं अछेदंग वेदंग कर्मंग कालंग खंडंग बंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा सिद्ध विरदं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयाद विक्ते यथापे विभुक्तं गच्छयाद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गृहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मन्त्रे नमो एक तन्त्रे नमो एक तन्त्रे न धर्मं न बर्मं न सर्मं न साके न बर्मं न चर्मं न कर्मं न वाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे कहूं कंज के मंज के भरम बोले कहूं रंग

नेह ग्रह हंगहु देह दुखंग हु ओख दी रोग के सोख सोखंग हु देव विद्या कहु दैत बानी कहु जाछ गंधर्व किन्नर कहानी कहु राजसी सात की तामसी हो कहु जोग विद्या धरे तापसी हो कहु रोग रहता कहु जोग जोग तंग हु भूम की भुगत मैं भ्रम भुगतं कहु देव कन्या कहु दानवी हो कहु जाछ विद्या धरे मानवी हो कहु राजसी हो कहु राज कन्या कहु सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध से खंग कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ।

कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र निदंग कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेच्छ भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवाणी कहूँ गारुड़ू।

शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र ब्राद नहीं मित्र माद जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ माद जय नाम थाम नहीं बर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं शत्रु साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय याद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो नंग अच्छा स्वरूप अखय भंग जय नेत नेत उजरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अच्छा अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावतन पार कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमंत कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र दुचरंत वेद कई गोक काव कथत कतेब कई यज्ञ होत्र कई पवन हार कई कर्त को

मृत को आहार कई करत साग पै पत्र फच नहीं तब देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जग याद करम कहूं अगन होत्र कहूं तीर्थ धरम कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई कर्त बांध बांधन विचार नहीं नयक दास पायतन पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई यज्ञ होत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तदव दास पायतन पार कहूं राज रीत कहूं जोग धरम कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूं हस्तदान कहूं अश्वमेध मुख को बखान कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जो गरीत कहूं बिरद चार कहूं करत जाच गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ कर्म कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदब दास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदब दुष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन भोग टोसा।

पद सर्व जलेर थलंगन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूपा भेद अभ्यंगन खंडो भूता छेद छंगन काल अपाल दयाल स्वंग दे ठट्यंग मेर आकाश भुआंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जे रचयंग देव देव बरंग सबकी नीदीन जमीन जमा जे रचयंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न सुख सुखंग जे रोग न सुक न भोग भयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न माद पितंग जे रचयंग छत्री छत्र शितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैख न दाग न दुख गणंग जय अंड ते ब्राह्मण रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पदाप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रुबिंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देवा देवा भेव नरंग नरपाल रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग किये देव देव सराद पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जात न पात न ज्योत जुतंग जे दात न मात न ब्रास सुतंग जे रोग न सोक न भोग भुवंग जे जंप किन्नर जाच जुवंग नर नार न पुंसक जाह किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाजर अथादिक पांद गणंग भवभूत भवेख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भू मेर आकाश निवासितंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग दुध चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई।

गण किन्नर जाचे भुजंगर चे मण माणक मूर्ति लाल सुचे अन भंज प्रपान गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कते अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध अधो मुख ताप तपय कई कल्पन लो तप ताप करे नहीं नैक कृपा निध पान पर जय फोकट धर्म सब तज है एक चित्त कृपा निध को जप है तेउ या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्थर है एक नाम बिना ने कोट प्रति इम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस है।

गंज भंज जानिए अभूत भूत है सदा गंज गंज मानिए अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पद्र जानिए नराग रंग रूप है न रोग राग रेग है अदोग दाग दग है अभूत ब्रह्म फेक है न दात माद जात है न बाद चिहन वरण है अदेक सेग भेग है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्वभरण है जिमी जमान के विके सदीव करम भरम है अद्वैक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठौर में विशेख अन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान नेत नेत कै बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइए गंज आदि देव है कोस कैस पाइये जिमी जिमान के विके समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाट है न घाट बाट होत है नहान है न बान है समान रूप जानिए मकीन यो मकान अप्रमान तेज मानिए न नेह है न गेह है न जात है न बात है न दे न मंत्र है न मित्र है न दात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न सार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संग है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साहु है न साह को कुमार है न ने है न गे है न दे को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है या जन्म है या भेक है न दात है न मात है या ख्याल खंड रूप है या छेद है या भेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है या गंज है या भंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभरम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत फेक है बलिय रूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न बात है न चित्र

वेखिया है, न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है, न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है, न काम है न क्रोध है।

गजाधपि नराधपि गरंतु सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि विशेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सूद है त्व प्रसाद रुआ मल छंद रूप राग ना रेख रंग ना जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध वरक सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरक अपार हस कीट बिखे बस सब ठौर मैं निर्धार जात पात ना तात जाको मंत्र मातना मित्र सर्व ठौर बिखे रम्यो जय चक्र चिहन न चित्र आद देव उदार मुहूर्त अगाध नात अनंत आद अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत देव भेव न जान ही जय मरम वेद कतेब सन कौ सन के सनंदन पावे ही न सेब जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर पार नेत नेत पुकार ही शिव सकराओ मुख चार सर्व सबत पतार के दर जाप ही जय जाप आद देव अगाध तेज अनाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहो विराज धीराज राज प्रवीन जछ गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैसन के बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे गुड गौड न भील भी कर ब्रह्म से स्वरूप रात दिवस न मध्य उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जात्रण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सबद पतार के दर जानिए जह ज्योत शेष नाम सहंस फन नह नेत पूरण होत सोध सोध हटे सभ सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर करब पड़त पड़त थके महाकब करत गाड़ अनंत हार हार कहो सबू मिन नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखेओ न सेब कतेब देव दानो मूड मानो जस न जान जेब भूत भव भवान भूपत आद नाथ अनाथ अगन बाय जले थले मैं सर्व ठौर निवास देह के नाने सने अभे नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयालद वेख चक्र चहन न बरन जाको जात पात न भेख रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व खायक

बरंचिहन ना चक्र जा को चक्र चिहनाकार जात पात ना गोत्र गाथा रूप रेख न बरन श्रभ दाता श्रभ ज्ञाता श्रभ भू को बरन दुष्ट कंजन शत्रु भंजन परम पुरक प्रमाथ दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ कर्ता जगत मय जह गाथ भूत भव भवेक भवान प्रमाण देव गंज आदवंत नाथ श्री पद परम पुरक अभंज धर्म के अन करम जे तक की नतौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर मच्छ कछ अपार हूम जले थले मेहमानी जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक शत्रु खालक दीन दयाल मुकंद अघौ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुक्ता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्र सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्व भर्ता आदरूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देवा खंड भूमका जले थले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देवा पार श्री पद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोटेन्द्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र मुखचार कोटेन्द्र उपेंद्र व्यास नख सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुखचार आद अंत न बद जाको भूत भव भवान सत दुआवर तृतीय काल जुग चक्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोध सोध थके महा

सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विदतैन दोहरा। को आत्मा स्वरूप है कहां श्रेष्ठ को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण है कवन सुरत कह नरक, को सुगुड़ा को मूढ़ता कहां तरक कव तरक दोहरा। को निंदा जस है कवन कवन पाप कह धर्म, कवन जोग को भोग है कवन कर्म अप कर्म दोहरा। कहो सुसम का शोक है दम को कहां कहंत, को सूरा दाता कवन कहो दंत को मंत दोहरा। कहां रंग राजा कवन हरक शोक है कवन, को रोगी रागी कवन कहो तत्व मोह तवन दोहरा। कवन श्रेष्ठ को पुष्ट है कहां श्रेष्ठ को विचार, कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा।

को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार विचार त्वा प्रसाद दीर्घ त्रिभंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदि प्रत्येज चरासुर मारण पति दुधारण नरक निवारण गुड़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन रमक बर्दन छद्रचिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उद्दंडन रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुंसन महक मथे दान प्रहारण नरक निवारण नद मुधारण उर्दे जय जय हुसी महका सुर मर्दन रम्भक बर्दन आद वृते डाबरूड वंगे बर्ब वंगे भुजा परंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत झमके भूखण दमके अस्य झमके फुंग फनंग जय जय होशी मैखा सुर मर्दन रमक बर्दन दैद जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण ध्वजा फरंगण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन भूमा कासल उर्द अथे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्ता सुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय नराचन धर्म वृते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अख ओख निवारण दोष प्रजारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणि अर्भुंगारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुरहारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़वी प्रदंते जोग जयंते मनज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूजर प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन भरम विनाशन धरम दुजे घुंगुरु खमंगण शस्त्र जमंगण फणियर फुंकारण धरम दुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र कथे केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट मिनासन मृत मथे कावरू कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय हो सी सब ठौर निवासन पाए पताल कासन ले संकटी निवारण धम उदाहरण तेज प्रकरखंड दुंद तपय दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाथ अगाध अछे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी सहस्र प्रकरखण आद नील अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी तमंके के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होशी रक्ता सुरखंडन सुंभ जगरत निशुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोज विसोचन कोज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे शुभ्र सुभासे दुष्ट कसे चंचला ब्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन आद अनाथ अगाधुर्धं घंट का बिराजे रुण झुन बाजे भ्रम बाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिक भाजे सुकूप राजे मध्य उरंग दुर्जन दल दजे मंथन रिजे सवय न भजे रोह रणंग जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन चंड चक्रदन आद कुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर वृते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंते दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते बिड़लाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दोधारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन विश्व विध्वंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तरनासे ज्योत प्रकाशे तुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वारखण दुष्ट प्रतरखण वितल तले अष्टायत बाहन बोलने वाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन आद अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे।

कारण करी ली गर्भ कही ली जोत जति ली धुंद मते अष्टायध चमकण शस्त्र जमकण दामिन दमकण आद वृते डुक डुकी दमंगे बाघ बबंगे भुजा फरंगे शुद्ध कते जय जय ओसी मैं खासुर मर्दन आद जुकाद अनाद मते चचरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे पापान बिहंडन दोष प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चारे नरक निवारे पति दो धारे मुंड मथे जय जय ओसी मैं खासुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दन दान वर्णन विराल बदे सरदार विपरखण दुर्जन धरखण अतुल नमरखण धरम तुझे धूमराज विदुंसन।

0: तुम कहो देव सर्वं विचार जिम की हो आप करते पसार जद बबूतन भय अनंत तव कहो जथा मद त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल जद भय अभूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दुख रहत जय नेत नेत सब वेद कहत कई ऊंच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जो को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सिवंत कई पल सूरज सिद्ध कराए ब्रह्म एक रूप सुवर चल धारे एक छिज तेज वन भावे आस दाता दुरंत यद वैन नमस्ता रूप सब प्रेम रह दुरूप वैन सब लग उच्छे सरूप कन वैन काले सरूप करुणा निधान कामर कृपाल करुणा निधान दयाल अंजन दुख हरण भंजनाल जल थल प्रभा करुणा निदान कारण स्वरूप जय करुणा निदान रंग रूप जय खेद भेद चाहे कहीं काल सब जीव जय दृष्टि करहि कमाल सब बुद्ध मन में रहि कदम स्वरूप बुद्ध को पाद में धम स्वरूप जय रूप देख न रंग राग न सिज जय मेरे फिर जता रात कंठ जल दे मई भवन तन दुरंत ते ने जल दे ने सिद्ध मन चरण दुर पाद जो जय तन मेरे पर सर पार रंग न ने भूख कह जा उतार रात दिन ऐ गोट ने तज पान हार ते गोट को दुख की द्वार ते मेरे पर दुर मां की दु जय ने ने सिद्ध मन चरण अनंत
1: ਤੇਰਾ
0: नाम है। फराके फिरंगे माने कंधारी कोरे से जाने का चंगे माचंगे बचपन ने जा नाम है। मने पटम के तेरे मन सो तपस कर दे डेड़े तेरे के मन जाने सरम का मन है। बंग के बंगा के मेरे हंग के फिरंगा वाले दिल के दिल वाले तेरे यार का मन वाले दिल यार रो के रे ने मन का दे सकते हमारे रे मेरे बिन कसरी बुंदा के बाप के मुंह को मिलत है। दिल के बाप मुंह को मिलत है। गोखा गोन का वचिन वचिन के सिर ने बते बते से माई जो के से के नलत है। दिन रे बे जाए उसे के दलंड पर आप आयो सर धन ना पूरा पूरा सो फल सर मैं नाम पर दूर से वतन को सुरे सदान वाले को मैं सदान को सर को रवे तो कर दिया मैं सगा रंग हमारा रंगीन रंग रूप में ब्रह्मीन और करो दिन रात दिन सावधान दिन बिकाई और तो दिन सात दिन आई है ना पार दे जब मुझे मैं पार सारी बिन पर गए उधर रहे पार पर ही तो जाके तो दी की पर बल पीछे बहुत जाता था कि जो का सुंदर पर जाए सुंदर स्वरूप है तब मन को सुंदर रूप रूप है मन को भोर है दिन को दाता को बड़ी मन को कारी है साधा को रचि के गुण को बहार है को रचि को सिद्ध को स्वरूप है बुद्ध को विभूत है के गुरु को अब को को छला बना सिंह न काम को बंद आज के हम को ध्यान दा हम को मन गड़न दा लगे तेज को प्रकाश नि मन काल हो के काल है के संतुलन के साल है के मंत्र न को थे को वृत्त का दास सिंह है जो को हम को जग रह के तेज हम को मन प्रभु को मन को मन तेज को मन प्रकाश सिंह रूप को निवास है तो बुद्ध को प्रकाश रूप को जगाव है तो बुद्ध को प्रकाश जो घर है तो देव मात्र देव है तो बुद्ध जन रहे हैं देव मेरे को देव है जो सब का पता है देव मन को देव है जान को बचा है मान को देव है जब काल को बढ़िया मांग तो देव को वर डाल दे जो बरने के तरह ना बंद को हंड है मन ही पन तो मन है गिर को मन है रहे मन को मट है बेसुर को बन रह गया बुद्ध को हरण बेसुर को गुण बन गया बदे जो को प्रकाश है पाई है ना पर जो को प्रकाश को पाई है जाल विचार कर विचार पर जा सी है विचार अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है जो देव के अधीन है जटि रवि मम जगत के देवन के देव महादेव भंग देव देव भूम के बजिया ने मोहिय दिया बाल के रे बजिया राज न के राज न के राज हम के साज राज के हम को जोग है अपने यद राज माल जो का बन के कर है के दुद ता को के हक के ता का सक के ता को है कुछ अगल के एक सती एक ता है चार के तीर जैसे छिरा वद छाज जैसे छतरा तीर जैसे छिरा के दिशा बकल सिर के गोट के हर सही सही हर उधर रब से ने हवा सब जैसे जैसे डोला दिल से डोसन ना बोल के पिता जल बाद से बोलाओ के रूपा के सिर राम बाहु सुर सुरंग बाद ने सिर नहीं भूल के जब प्रति जमे रे के प्रति जमे से के जगड़ की रत के बड़ा जगड़ ही माल से बोल के ते हर कहीं फटक निकल बोलत के मालु गढ़ का से पूर सी सी सुरंग बाद ने कसम ही उठ सी है सी बाद ने के सुर सी हला बने रहन सका हाजी बोल रे हला बने रहन हाजीपुर के मोहियत है चंदन से चंपावती चंद्रमा से चंद्र के दान जो चंदन का मतलब जो जो ये चाहन चंद्र से मगन जो मन भगवान से बिलंगा बात की अंतर दिहाड़े की रोजी आदि सब ये दिहाड़े की रोजी और रसी पे रखी और रसी से के दन मन से मान के पता नहीं तेरे की ना गाय करता है ये वर्त नहीं दिहाड़े की और गाय की कर जाना जाए मन के यार तो ये काम जाए ये तो है हाथी तो नाम जाए ये है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर उठाओ रब का राज भजन हो जाइए तो है पूर्ण करता भी जंत्र में गिरता है तब पूर्ण तो प्रीत रत चंद्र में तोते पार पायत है स्व प्रसाद माधुरी चंद माधुरी चंद अद्वयनाथ आसन गढ़ बोल आसन गढ़ बोल अद्वयनाथ उमा तोल अक्षरनाथ जल सुजान

0: जय गुरु धन्यवाद जय अंत जाम सब धन्यवाद जय महाराज जय अंत जाम सब जय पाच तान तान श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तान श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जय पावन पुत्र स्थान लख से खमर बादी यहां जावर दे होए कछंद बादी यहां कृत कंठ सब कव संत और बिन महाराज दे विद सब जाने बोल महाराज के सब गुरु जाने में बिच मरना
1: सुनाला

मंचतवह उदम जा आहिर हर जियो परिया सैल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जन पिता लोक सुतबंता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवे सैको सा तस पाछे बछरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया।

तुद आपे सिर जो सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा। तू

कहत सदासिव निरंकार का चीनत नह भिव आप आपनी बध है जेती बरंत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज से तज कीनी उतबज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा हुए बैठा काहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जुते उठवत तपाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे अस ध्वजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जावन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छा छुए सकै न कोई एक बार जिनत मैं संभारा काल फांस ते ताही उबारा जिन्नर नाम तिहारू कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैले उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अजदुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशद फल पावे सोई दुख नत सह ब्यापत।

पई को कह चौ पई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस हुन तीन कहे जय भादौ सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा एत सरे

की लाज अस गोविंदास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

हर नाले हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या ना ही घर तेरे घर ता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द घनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या ना ही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया करशां सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दियां एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तत घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस की

0: केवल जावे दोहरा ऐसे चिन्ह प्रताप ते जन प्रियो प्रताप तीन लोग जय जय करे रे नाम सुजा दोहरा
1: सब द्वार को चाट गए गए द्वार द्वार पाए गए केला जस गोविंद दास द्वार दोहरा राज का खालसा के रे न कोई ख्वार हो सबने बचो शरण जो होए
0: उठ गए स्वामी लक्ष्मी कर कोड़ा पासार डंका बाजा पते कान कन कतार चंद्र चक्रवर्ती चंद्र चक्र पुते स्वयं पाव सुबन सुबदास सुब जुगते लोकार प्रणासी रियान स्वरूपे सदांग संदेया पंग विभूते देखते को पते नस्र बेदन गया पुते आज नान गुरु गोविंद सिंह जगाल भुर्य साय दरबार में ते दरबारा सत्तन से नंकारा लक्ष्मी पड़ी तुमरे दरबारा सदोते कुमस्कारा दोहिरा नान गुरु गोविंद सिंह जी पुनर अवतार जन्म रोज विराज ऋषि अब चंद्र पार।

साहिब भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे उस राजे कितनी श्लोक महला पहला।

तीर्थ नावह आर्चा पूजा अगरवास बहकार जोगी सुन त्यावन जित अलख नाम करतार सुखम मूर्त नाम निरंजन काया काया कर सतिया मन संतोख बजाय देने कह विचार दिन दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा गारा बावे कर एक होंदा खाए चलह ऐ धाउ

मूरख पंडित हकुमत हुज्जत संजय करे प्यार तरमी तरम करें गवावे मंगे मोक द्वार जति सदावे।